आकर उसके घर और बताओ घर की गाय जीना चढ़ा उसने कर उसके गाय की गाय क्या आसमान के

0: भी अन्न केरा भी साग सब्जी फल फूल सहित पुष्कर पूरक खानाले बच्चा हना तंदुरुस्त बनाए पूरक खाना संसद दुई बरस सम्म स्तनपान जारी छ।
1: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा सबैको लागि सन्देश।

0: जीवन से स्वतंत्र कसाई हानिकारक नहीं रखा वो किए यदि संपूर्ण नमस्कार कर लखन ऊर्जा केंद्र में जा रहे
1: विश्वास बदला को सही जानकारी पाएगा वो लखन ऊर्जा केंद्र करना बारह पता लगेगा आधिकारिक इसलिए नेपाल डॉट ओ आर जी में जाकर आवश्यक जानकारी लिख सकेगा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण

0: चलेगी बाहर। संध्या सवा छह बजे हमारा संदेश में अपना और स्वागत बा हम कुमार एफएम पर्दिया से उत्पादित हमारा संदेश पर्दिया का साथी एफएम राजापुर में से प्रसन्न प्रसारण होगी बात। हमारे संदेश को गोलीदारी मुख्य मुख्य समाचार कम शीर्षक में से विपद व्यवस्थापन का लाभ त्रिभुवन महादी का गौरव से आर्थिक सहयोग कोटि कोशी रुपया महिला किसान पहिया पास बर्दिया का 83 जना पाचक तथ्यांक अनुसार संपर्क भी बर्दिया का खेल मैदान में पशु चौपाया का कब्जा बर्दिया का स्थानीय तह का बाकी का स्थानीय तह का अस्पताल में जनशक्ति उपजे तथा वो चीन ओरी प्राप्त व फुटल तिब्बत में जारी उत्तर अभियान स्थगित। समाचार विस्तार में बर्दिया का बांसगढ़ी नगर पालिका का गौरा स्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय रसुआ जिला में महिला विनाशकारी पहिला पहिरों से प्रभावित परिवार का सहयोग आर्थिक सहयोग करेगा। विपद प्रभावित नागरिक तथा परिवार हमें सहयोग करने उद्देश्य से बेहद विद्यालय का शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यार्थियों का सुस्पूर्त रूप में संकलन कई 12,895 रूपया प्रधानमंत्री दैनिक पक्व प्रदान घोषणा दाखिला कई विद्यालय का प्रधान अध्यापक त्रिलोचन शर्मा शांत विद्यालय परिवार विपद का कारण प्रभावित हुई नागरिक तथा परिवार का सहयोग करना सुस्फूर्त रूप में आर्थिक सहयोग संकलन कई उसमें रकम जमा कर रहे विपद का कठिन तथा दुखद परिस्थिति में सहयोग करना सबको शिक्षा कर्मचारी तथा विद्यार्थी प्रति विद्यालय का प्रधान अध्यापक हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त कर विद्यालय विपद में पर्वत नागरिक का सहयोग का लाभ सबको जना एकजुट हुई पढ़ना में जोड़ने की मानवीय सेवा में एकता जो हमारे शक्ति रुकना संदेश समेत दिलवा त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय बांसवाड़ी का परिवार विपद प्रभावित का सहयोग में दिखाई लगी मानवीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व तो प्रशंसनीय रहता स्वर्ग भोटे कोशी नदिया में अहिरक किसान बचेता छ्या का पाचक तथ्यांक अनुसार बर्दिया का 83 जना संपर्क विभिन्न जिला प्रशासन कार्यालय बर्दिया से आज 2 बजे जारी कर तथ्यांक अनुसार संबंधित स्थानीय तथा परिवार पुग्न जानकारी अनुसार 85 जना संपर्क विहीन आभिन्न खुल्ला हो। जिला प्रशासन कार्यालय का अनुसार बर्दिया से रोजगारी तथा ओरा काम का प्रभावित क्षेत्र में पुगन संपर्क विहीन होना में बांसगढ़ी नगर पालिका का 18 जना 12 बर्दिया नगर पालिका का 25 जना राजापुर नगर पालिका का 9 जना ठाकुर बाबा नगर पालिका का 13 जना गुरैया नगर पालिका का 2 जना मधुबन नगर पालिका का 1 जना गेमा गांव पालिका का 18 जना हो। ठेकान अनि खुला 2 जना संपर्क कार्यालय प्रशासन कार्य बर्दिया चले उसी का उद्धार कई जिला 27 जना तलब को 2 जना खैर जिला प्रशासन कार्य का सूचना अधिकारी अशोक कुमार भंडारी जानकारी देना। बर्दिया का गुलरिया नगर पालिका चार पुना पुल मानव कवर हल तथा खेलकूद मैदान अस्त व्यस्त बनता जिला खेलकूद विकास समिति का अधीन मानव कवर हल में पीना पानी विद्युत शौचालय जैसे आधार सुधार सुविधा समेत उपलब्ध नहीं हो। कपड़ हल का शौचालय बिगड़ल फुटल पार्छ खिलाड़ी फुकड़ा समस्या पैदा का खेल मैदान में पशु जल पाया खिलाड़ी फुकड़ा मैदान में नियमित अनुगमन शिक्षक प्रशिक्षक का व्यवस्था निर्विघ्न खिलाड़ी का अभ्यास समेत समस्या मापदंड रहेगा। जिला स्तरीय प्रेमरी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजना बिना मैदान का ट्रैक निर्माण हुई 5 वर्ष जीर्ण जिला खेलकूद विकास समिति का प्रमुख वृन्द्र पूर्ण नगर बजेट अभाव का कारण कपड़ हल तथा मैदान का मरम्मत संधान का निषेक विद्युत रकम भुगतानी हुई निषेक लंबा समय से विद्युत सेवा बंद रख समिति चलेगा। अघन 16 गते 1929 गते समय 10 वर्ष से खेलकूद प्रतियोगिता बिना तलब प्रक्रियामा सुरु उच्च खाण्डो बाहेक अधिकांश खेल र प्रशिक्षक निर्वाचित खेलाडी र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन ध्यान हार्दै खेल मैदानको मर्मत किन पानी पिठोत शौचालय तथा आवश्यक प्रशिक्षक र तत्काल व्यवस्था गर मात्रबाट हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र पर्व चाहे पूर्णिमा अर्थात् ऋषि तर्पणी तथा रक्षा बन्धन आस्था फल धुमधामले मनाइएका सर्वण शुक्ल पूर्णिमा अन्तिम मनाइने पर्व गुरुवार पुरोहित से मन्त्र उच्चारण कैफ लघु चनै सपना प्रसङ्ग हाथमा रक्षा सूत्र बहनमा परम्परा पाचक समय भरि दिदी बहिनीहरूका दाजु भैयाका हाथमा राखी बहन रक्षाबन्धन राखी पहाडको रक्षाबन्धन भनेर चरण फेर पहाडिएलमा सुनि एक रिपोर्ट जनक पूर्णिमाको अवसरमा गुरुवार पुरोहित से मन्त्र उच्चारण अन्तर्गत लालु हड्डाद्वाराका रक्षा सूत्र हातमा बन्न अब शरीरमा लोभ चाहिँ धारण गर्नका चाहिँ गौतम विश्वमित्र अरुन्धति सहित सप्तरी सिंह तर्पण दिन पुग्नु पर्छ यी पर्व ऋषि तर्पण थिएकै चाहिँ दिदी बहिनी दाजु भैयाका दीर्घायु सुख व स्वास्थ्यका कामना प्रति रक्षा बन्धन पाठका महिला तत्वैका नास्कोटी नगरपालिका पाँचका सर्विला शर्मा
1: रक्षा बन्धनको दिन हामी दिदी बहिनीहरूले दाजु भाइहरूलाई स्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको राम्रो कामना होस् भन्दै आज राखी थालिन्छ।
0: हरेक वर्ष श्रावण शुक्र पूर्णिमाका दिन गुरुवार पुरोहित से मन्त्र उच्चारण दिन चनै वा रक्षा सूत्र धारण गरी चनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षा बन्धन मनाइँदा चनै पुरोहितका हात नसिए चनै तथा रक्षा सूत्र पाउँदा बेल आत्माका शुद्धिकरण वा शारीरिक रक्षा हुन वैदिक मान्यता अनुसार प्रत्येक बाँसकोटी नगरपालिका पाँचको पण्डित शरद पराल
2: शिक्षिका
0: शास्त्रीय मान्यता अनुसार ताजाधारी बरामद क्षेत्र उपस्थित परिवर्तन गुरु पुलिस से मंत्र उच्चारण कर चुने तथा रक्षा सूत्र बदल कर चुने पूर्णिमा मनाना करता हम धर्मी समुदाय को मने दीदी बहिना उड़ा दुख या बीच बाजार में प्राचीना राखी बाट का रक्षा बंधन मनाना चोन बढ़ा ये तो पर्व संस्कृति में सम्मान करती पर्व मनाना सकारात्मक पक्ष कैसे थे आप मौलिक संस्कार संस्कृति का संरक्षण करना सबका दायित्व हो कुमार चौधरी स्थानीय अस्पताल का भवन निर्माण जिसमें आवश्यक जनशक्तिकरण बिरुवा व संचालन बजेट का अभाव में अस्पताल संचालन में चुनौती देख पर्दा संघीय सरकार का नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार करना जिला का ध्यान स्थानीय तह में 1500 का अस्पताल निर्माण आग्रह पहले हो अस्पताल का भवन निर्माण सम्पन्न हो खसे संचालन का जिम्मेवारी स्थानीय तह में पड़ पास आर्थिक स्रोत अभाव मुख्य समस्या बन जनप्रतिनिधि जानकी गांव पालिका 1500 का अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न करल बा तर चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी उपकरण बजेट का व्यवस्था निकली बेल अस्पताल संचालन करने से गांव पालिका का अध्यक्ष छपन खाम पटेल बजेट निर्णय से गांव पालिका के अस्पताल संचालन करने से वहां कहा रह भारतीय सीमा में से जोर रखनापुर गांव पालिका का 1500 का अस्पताल भवन के निर्माण सम्पन्न हो जनशक्ति हो उपकरण अभाव में अस्पताल संचालन फिर गांव पालिका का अध्यक्ष अहमद शाह अनुसार गांव पालिका का वार्षिक आंतरिक आमदानी करीब 40,00,000 रूपया के रहता जबकि अस्पताल संचालन में वार्षिक करीब 3,00,00,000 रूपया खर्च लगने अनुमान था उसे सुनारी गांव पालिका का लोग अस्पताल भवन तैयार हो सके संचालन खर्च धारणा स्थानीय स्रोत पर्याप्त निरलकपुरे दात्री निकाय का सहयोग गांव पालिका का अध्यक्ष डॉक्टर बहादुर पौडेल बटुरेबाट स्थानीय तह अस्पताल के भवन निर्माण संग आवश्यक जनशक्ति उपकरण हो संचालन खर्च का व्यवस्थापन द्वारा संघ तथा प्रदेश सरकार से सहयोग मांग कर जिला प्रशासन कार्य चीन का छोचैन खुलवा व पूरे को लगभग संगम किनारा में 15 बड़ा तलवा फुटलक जानेर प्रशासन चीनिया पक्ष से उत्तरवा फुटलक सूचना आयोजक जानकारी कराई रखो तटीय क्षेत्र का नागरिक को सुरक्षित रहा सर्कुलर करवा छोचैन खुलवा व पूरे तेसरी लद्दिया में अंतर्गत को उपरोक्त सहायक लद्दिया का रूप में चिन्ह जाए ये लद्दिया चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में उद्गम होगा बहना वो नेपाल प्रवेश कर पांच तेसरी लद्दिया का मुख्य स्रोत शाखा बनना कर तिब्बत में से पकाईना पूरे पूर्व छोचैन खुलवा नेपाल का स्वागढ़ लखा प्रवेश कर पांच फर्के कोशी वो तेसरी लद्दिया में प्रणाली में मिलत बिहान समीब 20,00,000 घन मीटर पानी जमा हो रहा तीन दिन में थप 3,00,000 घन मीटर पानी उत्तरवा जमा हुए अनुमान चीन का जल स्रोत मंत्रालय संभावित अंतरा फुटना जोखिम मध्य नजर गई चीन का जल स्रोत मंत्रालय तल्ला का अवस्था खसी निगरानी कर पहरो का कारण से थप पैया का जोखिम बढ़ पा सचिव समेत तिब्बत में जारी उद्धार अभियान में स्थगित कर संदेश का समय उड़ाई लागल बा हमारा संदेश उड़ाइना से पहला मुख्य मुख्य संदेश की खेरा बर्दिया का बांसुरी नगर पालिका कखौरा स्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय दसवा जिला में अहिला विनाशकारी परीक्षा में से प्रभावित परिवार का सहयोग आर्थिक सहयोग करवा वह जिला प्रशासन कार्य रसुआ चीन का छोचैन खलवा वो पूरे कसानपो लटिया का संगम किनारा पन्नक बड़ा तिरुवा फुटलक जुनी लिटर अब खमा सन्देश प्रभाव बिहान 7 बजे नेपाली भाषा खमा सन्देश लेखाइदेपछि तबसम्म प्राक समाचार कक्षाका सबकुशलहरू अङ्क प्राथमिक सुमरिया गौरी शङ्कर क्यामरामा रमेश सङ्ग मोहन कुमार रेडियो प्रभाव सुन्थे जय प्रभाव।

0: said, on the back side of the pack, you said that in the day.
1: He said, so what? He said, well, the fact is, he said that in the
0: day. I was saying, kind of that in the day. You know, not to get a bummer, but the fact is, he, someone saw that in the pack, you see, kind of a bummer, but the fact is, he, someone saw that in the day, but the fact is, he,
1: अति
0: विपन्न मुक्त कमया मुक्त कमलरी तथा दोनपरी तीर्षकरु
1: निर्भर समस्तकारी तथा किसी प्रभु के बाल पत्र को बांधेगी और समस्तकारी को निर्णय करेगी
0: बांसकरी नगर पालिका नगर कार्य पालिका को कार्यालय बांसकरी कर दिया जबरदस्ती वर्गों का बेपत्ता पाने कार्य विरुद्ध सोलह अंतर्राष्ट्रीय दिवस को संदर्भ में उम्र का बेपत्ता योद्धा स्मृति पाठ में यह कदम 14 गति का
1: इस वर्गा बेपत्ता जनवरी को संसद समय विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजना होने गई
0: उत्तर दिवस को अवसर में उत्तीमा एवला अंतिम वर्तीय फोटो प्रदर्शनी साहित्यिक रचना वाचन तथा पाठ अवलोकन 1350 दिन प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ
1: साथै बेपत्ता पाएका व्यक्तिहरूको संसद सम्मानका लागि आयोजना हुन गएको कार्यक्रम असरकारी भई कार्यक्रमलाई सफल
0: गराउँछ कार्यक्रमले स्थान र समय 11:30 बजे

0: खाना नियमित रूप में आयरन कैल्सियम आयरनिस डाइट स्वस्थ डाइट सुरक्षित परिवार
1: रेडियो एफएम द्वारा शरीर को जारी संदेश

0: को जिम्मेवारी दिए राजनाथ शर्मा दिया आज मंत्री परिषद बैठक के रक्षा मंत्रालय सचिव शर्मा गृह में सर्वना गये हो। हाल गृह सचिव रहकर राजकुमार श्रेष्ठ तीन दिन पछि अनिवार्य अवकाश में जाते हुए वहां राजीनामा आज को मंत्री परिषद को बैठक ने स्वीकृत कर
1: जोखिम
0: बारे विज्ञको विश्लेषण लगायत का खबर बाकी सीआईएन को साझा खबर सुन्ने
1: आजको भाग विभागको कुरा हुँदा

0: इस प्रकार विफलता जनक सबसे ज्यादा समाज में विभिन्न कार्यक्रम आयोजन होना गई
1: उक्त दिवसको अवसरमा उनी

0: इस्तेमाल करते बाद उसे कब बिगड़ सकू में कृषि का मशीन थे इसे चुकमा बना गयी खबर कल ऐसी खड़ा मजाक अपने बना लिखा हजुर आफ्नो कृषि सम्बन्धी पाउन सामान किन्न चाहे यदि चार टिका ऐसी सम्झौती पाँच बजे मार्फत पशुपतिनाथ सप्लाय छ
1: सम्पर्क नम्बर 98582 25014 हो 98224 0268
0: नवजीवन सहकारी संस्थाको पक्ष रामको सर्वनाथ ठाउँ सेवा जानकारी कार्यक्रम